0: that's all that happens to anybody who's well. I'm not that I agree that something or present or possible for it. I'm not that I can't do it for myself. But I can't have some sense. If you want to say more, it's not that I'm sorry. I'm sorry.
1: रेडियो कोलकाता एफएम को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यक्रम भर्तिया द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, मेरा नाम रोशन चौधरी, वास्तविक नगर पालिका प्रधान प्रधान भर्तिया और प्रॉपर्टी जमीन के मुद्दे पर दफ्तर का नाश्ते स्थापन सुप्रीम डिसन गांव से प्रस्ताव दिखाने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टी जमीन के मुद्दे पर हमारे इंटरेस्टी बांसों के बांसों को बांसी सुवर ये जंदी स्पिटल है कि लगाएं समय काम तक खाने को आवश्यक इंसान लगे तो समुद्र का चमकने शासन इस्लाम के चीजें तो लगाएं समय को आवश्यक इंसान लगे तो समुद्र का हम आवश्यक इंसान लगे तो लगे और इन बड़े समुद्र के हम
3: Thank you.

संरक्षण संबंधी विधेयक 2081 का पार्लियामेंट संसदीय समिति के छात्र तीव्रता दिएको छ। यो विधेयक का बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति का सभापति सहित समिति सदस्य संघ को छलफल अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा पर्यटन समिति का

तेह्रका कुरा नेशनल कल्चरल एक्ट 2067 का कुरा ओल्ड हेरिटेज 1972 का कुरा डाइवर्सिटी अफ कल्चरल एक्सप्रेसन 2005 का कुरा संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी जनजातिको लागि अधिकार घोषणा गरेको युएन ट्रिप का कुरा

देश में उत्तर बाईस रुपये भैई जिस उत्तराधिकारी प्रशिक्षण एकदम आर्थिक टिप्पणी में कोष को हमें पैल्हे राख जो विधेयक बनाऊे हमें अति टिप्पणी भो विधेयक बनाने कर्मचारी साथी तो अलगसम वहां नई डेढ़ वर्ष में यूजुअली लेयर हो फिर बढ़ाने कसले होना आ कति महीना में टीम को चेंज करते इंस्टिट्यूशन में एटलिस्ट हमें कति लक्ष्य भो वहां के निवेदन करूँ आर्थिक टिप्पणी को पैला कोष में अर्थ मंत्रालय पर यह रिस्पोन्स आए थे हमने कोष में हाँ तो रिस्पोन्स आई सके अब हमें आर्थिक पार्ट तो डेफिनेटली चाहिए तर त्यो आर्थिक पार्टले अप्सन ए र अर्थ मन्त्रालयले रिजेक्ट अथवा सरी भनेछ भने अब हामी अप्सन बी तर्फ जान्छौँ त फेरि डेढ वर्षपछि हामी अप्सन ए नै लगेर त जाँदैनौँ यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ गेट छ त्यो हराउँदै गइरहेको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने बिजनेसलाई केही इन्सेन्टिभाइज गर्ने हो कि एन्डेन्जर प्र्याक्टिसनर्सलाई केही चिज प्रिजर्भ गर्ने हो तर इकोनोमिक साइकलबाट नै चल्छ राज्यको कोषको अवस्था पनि त हामीले देखेको छौँ रिस्पोन्सिबल एन्टिटीको सांस्कृतिक विभाग छ त्यसको करेन्ट सबै इन्स्टिट्युसनल अलाइनमेन्ट रिभिजन चाहिँ एकदम हाइट्री गर्नुपर्छ भनेर डिजिटल आर्काइभ्सको तपाईँले कुरा गरे

0: और समाचार सुचारू भविष्य इस संपर्क करो स्वास्थ्य प्रथम
1: रेडियो
2: कार्यालय स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा

भई संतुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी धुन पान घटिनामा चाहिँ टुर रही तर भन नियन्त्रण करी आज निर्णय कार्य जीवन अझा विषमा रोग बाँचे स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो सहकारीको स्वास्थ्य कार्यले प्रत्याशी जनरिक मजाले सन्देश।

asking Radhika Amar Sundesh for BFL satellite from Rajapur, OFM Radio, 24 Radio, 48 FM, Gopalpur, Radio, Hatemaru, Chandhika, Upalika, Pakima, State Kasam, Pursar, and Pitibar. Amar Sundesh, Puridari, Mukhya Mukhya Samachar, Kasvirshak Masjid, बांसुरी नगर पालिका में किसान डायरी विक्रम शुरू राजमार्ग में प्रकटनानी उन्नीकरण प्राप्त प्रक्रिया पूरी चार चौपाय व्यवस्थापन अभियान संचालन प्रक्रिया में मानव प्रजन प्रजनन न्यूनीकरण करार कर कई वर्षों में करीब 69 किलोमीटर प्राचार विस्तार प्रक्रिया में प्राप्त प्रतिपादित प्रमुख प्रांश वर्षीय एक नियंत्रण में वो नेपाल सरकार कोरिया बीच कृषि आधुनिकीकरण करार कर

समाचार। बांसुरी नगर पालिका किसान अभिलेखीकरण तथा कृषि सेवा में सहज पत्र सुनिश्चित करना उद्देश्य सहित किसान डायरी विक्रम अभियान शुरू करना किसान परिचान

0: किसान पहचान व्यवस्थित बनेना तथा नगर पालिका से उपलब्ध बिना किसी सेवा मॉल चलने वो अनुदान लगाए का सुविधा प्राप्त करना सहज बनेना उद्देश्य किसान डायरी वितरण शुरू करने को 500 नगर पालिका स्थापना पहला दिन वा नंबर 7 का हरिया टोलो बहनपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम अध्यक्ष बलिराम चौधरी का प्रमुख अध्यक्षता में वितरण कर किसान डायरी वा नंबर 7 का प्रत्येक टोलो गांव कोरोना पुखा वितरण कर सके बा एक डायरी वितरण किसान भगवान कृषि सेवा व्यवस्था बिना पटवारी अध्यक्ष बलिराम चौधरी
1: नगरपालिका

0: pertama teringat saya dengan sama saya terima ini. Pemuda jauh dari itu, jarak dari itu, itu seperti kuti pada ulah mesti bangun lebih pagi, bangun lalu terak kalau betul gaya itu sama dengan.
1: राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि सभा सदस्य सूची सचिव नियुक्ति परिवार प्रसाद निर्देशन पार्टी का महामंत्री विपिन कुमार आचार्य ने जारी आंतरिक निर्देशन स्वकीय सचिव को नियुक्ति पारदर्शी निगरानी जन उत्तरदायी बनाने खुला प्रतिस्पर्धा चुनौत कर नियुक्ति होने व्यक्ति को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह होने तथा समावेशिता प्राथमिकता दिन संसद निर्देशन अनुसार स्वकीय सचिव ने अन्य कुनै सरकारी वा गैर सरकारी संस्था में पूर्णकालीन रोजगारी गरेको वा दोहोरो को आर्थिक सुविधा लिएको हुनुहुँदैन। सचिव संसद को जिम्मेवारी सँग स्वार्थ बाँचिने कुनै अवस्था पनि हुन नहुने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति सचेतक प्रकाश चन्द्र परिवारले सीआईएमसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो,
2: आइलाई सदस्य हुनुभयो

सुनवाई करवा के सब एगारह घोषित होने को अधिवक्ता डॉक्टर प्रेम वासी ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को कार्य के लिए कानून न्याय तथा संसदीय मामले बताए प्रतिनिधि सभा का सभा में प्रदाता विपक्ष बनाएगा जो एक कार्यक्रम हो सशक्त पहाड़ बल नेपाल को गोताखोर तथा विपद व्यवस्थापन सहित का टोली ने गत वैशाखी हजार वर्षा समग्र अवधि में विभिन्न घटना तथा दुर्घटना और विपद जति में पड़ेगा 347 जना नागरिक सघु सुनता है। सशक्त पहाड़ ने नदी ताल तथा ग्रह रेखुला में डूबा तथा बगाई 211 वटा घटना 86 जना को जीवित उद्धार कर घटना में अपनी मृत्यु भाई 122 जना को शव निकाले विपद को उच्च जोखिम लगायत बाढ़ी डुबान तथा घटान का घटना में पड़ेगा 239 जना सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण महाकाल हावाबुरी में पड़ेगा 12 जना को उद्धार कर पहाड़ी क्षेत्र में पहिरो में पड़ेगा 4 जना को जीवित उद्धार कर सशस्त्र प्रहरी देश भर 226 स्थान में भाई आंकड़ा नियंत्रण में परिचालन भाई सोहाकारी में पड़े घायल भैया 4 जना को समेत सकुशल उद्धार गरेको कार्कीले बताउनुभयो। जसका विभिन्न स्थानमा भएको सवारी चरण दुर्घटनाहरूमा 6 जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ भने 807 जनाको घाइते अवस्थामा उद्धार गरी उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालतर्फ पठाएको छ। पानी लगातार परिरहेकाले सम्पूर्ण नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी रायको महानिरीक्षक नेत्र बहादुर कार्कीले सीआईएम मार्फत जानकारी दिनुभयो।

선택하고도 사고를 했다고 하고 있어. 사자 가능하다고 믿었어. 사람이 사파스리 빠져나 후이 빠져나 주마고 다니는 돌아가 라이크 비바를 리인컨 संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद स्वीकृति कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अध्यक्षता में बस को मंत्रिपरिषद बैठक में विधेयक पारित करते इस जुलाई 27 में संसद में पेश करने निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने प्रश्न पत्र चुनाव लाखों विद्यार्थी अभिभावक संग जोड़ी को गंभीर विषय भैया दृष्टिमती कड़ाई कड़ा कार्यवाही होने कारण व्यवस्था करने विधेयक गत मे महीना में यूजी परीक्षा में प्रश्न पत्र चुनाव प्रकरण पछि ल्याइएको हो। घटनाको अनुसन्धान 88 केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले गरिरहेको छ भने हालसम्म 13 जना पक्राउ परेका छन्। यसै बीच दिल्ली उच्च अदालतले सार्वजनिक परीक्षा सम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनवाईका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरेको छ।

संस्थाको किशोरी जो स्वास्थ्य भविष्यका आधार हो। रेडियो पूर्वाधार सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनैक चौधरी सहित

विज्ञप्ति में तिथियों का स्थान सर्वोच्च अदालत का तीन न्यायाधीशों